मनोकामना पूर्ण करनी सरदार सुखरार सिंह सरदार ब्रह्म ज्योत सिंह जी लंगराली पंज सार आदर कर दे। बीबी अंजलि प्रवेश इंद्र शारद पुत्र दी दात लई बेनती कर दे। झोलियां हरिया भरिया करनी आचर दी कला बख्शनी सरदार राजेंद्र सिंह जी चावला पंज सौ रुपए आदर कर दे। परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला अंग संसायो ना सरदार वजेंद्र सिंह जी रागी जन्मदिन दे खुशियां वजा पंज सौ रुपए आदर कर दे। दीर्घ आयु दे रोगता बख्शनी ऑपरेशन दी कामयाबी लई बेनती कर दे। सरदार संत सिंह जी लंगराली बेंत माया आदर कर दे। दे रोगता बख्शनी सरदार गुरसेवक सिंह जी लंगराली बेंत माया आदर कर दे। चढ़दी कला बख्शनी अंग संसायो ना सरदार दलजीत सिंह बाबू सिंह जी रागी लंगराली पंज सौ रुपए आदर कर दे। परिवार विच सुख शांति दे रोगता बख्शनी राजेंद्र सिंह सतवीर सिंह जी तबेले वाले यात्रा सफली होने लई बेनती कर दे। पातशाह कृपा करनी यात्रा सफली करनी चढ़दी कला बख्शनी अंग संसायो ना बेअंत संगता वालों आप जी दे हजूरी विच अमृत वेले तो इस समय तक सोने सोने रमा

सूर्य सुरार्दम शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनुभूतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूख बलि वेदन अवसी।

देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपत कौन गने।

देश मलिंद मवासन मातिग जान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सुबह तनी चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाजक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धोन पापन के वह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसंग फिरा जाग सत्र सभैव लोग चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादिव जौंद्र लोग को राज करेंगे कोटि स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम

ब्रह्मांड से ब्रह्मांड कीने 114 खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निरपार के ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंध नगेंद्र कई माच्छ काच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई

अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अशेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अपेव हरि अजेव हरि अशेव हरि पजु हरि थपु हरि तपु हरि जपु हरि जलस्तुहि थलस्तुहि नदस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि पजस्तु अंग रटस्तु।

क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन शीन कैसे कह तरत है। भूत बंचारी चित छौना सब दूध हधारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजया दे तो गौवन के जया ब्रेग भैया मानियत है। नाभ के उडया ताए पंछी की बड़ैया दे बगला बड़ा ब्रेग ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जान पे बखानी नाहे ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बस जाता है भूजरी के जया कह नब के उडैया सोच रैया कह बखानिया। फल के बस जाता है बांदरी के जया कह आधे से फिर जाते तो भूत क्या पछानिया। जाल के तरह को गंगेरी से कहा तो जाग आगे बस या सोचा गोर साम मानिया। सूरज सिव जाता है कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिव जा को कवि का पहचानिया। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत

मोरलोर पीटत ना गुड़ता को भेद पावे, पूजत न ताहे जागे राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल, सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी, ध्यान काज भूख प्यास।

ज्ञान के विहीन का अल्फांस के अधीन सदा जुगन की चौकड़ी फिराई फिरत है। एक से भय एक गए एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत सबूहन के।

जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी शत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे शत्रधारी बढ़ो अभिमान।

सिच दे करे अनेक तोपची कपट भेस पोस्ती अनेक दानिवावत है शीस का कहा भयो मल्ल जो पै काटत अनेक दंड सुतोना दंडौत अष्टांग।

इधर पुकारे परे शीत काल कुंचर और गदहा पुकार ही का भयो जो बैकाल वत्र लियो कांति बीच चीर चीर चोर ठाकुर ठारन समार ही का भयो फांसी डार बुढ़ियो जड़ गंग धार डार डार फांस।

ताप के सहित जब पाय अतापना तापना अनेक तन कहल सहत है। जाप के कीत जब पायत अजाब देव पूजना सदीव तू ही उचरत है। नव के उड़ित जब नारायण पायत अनल आकाश पंछी डोल बुकरत है। आग मजरित गत राण की परत कर पताल के बास क्यों भुजंग ना तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी पहो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तो रखो राव जी इमाम सफी मानस की जा सब।

जैसे एक धूर से अनेक धूर पूरत है, धूर के कणों का फेर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप से अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। खेत गच्छ मच्छ कित उनको करत पछ, कित अच्छ वच्छ होए तो पछ उड़ जाएंगे। केत नव बीच अच्छ पछ को करंग पछ, केत प्रत्यक्ष होए पचाए खाए जाएंगे। जल कह थल कह गगन के गौन कहा, काल के बनाए सब काल चवाहेंगे। तेज जीव अतेज मैं अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत, किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग बस किते मदीना मक्का निवासी, केतक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त, किते सुआ पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत, किते ज्ञान के भी जग जा रही मरत है। सोधारे देवता विरोध हारे दानो बड़े, बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगा हरे चुआ चार, पूजा रे पहन चढ़ाए हरे लापसी। गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट, लीप हरे भीतर लगाए हरे शापसी। गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब, पच हरे पंडित तपंत हरे तापसी। तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद, न रागंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न मोहंग न क्रोहंग न द्रोहंग न द्व्याखंग, न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग, न मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग, न नेहंग न गेहंग न कामंग न तामंग, न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न पामंग। अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्ध दा।

నమోహం నమాతం నకర్మం నపర్మం నజన్మం నజాతం అద్వైకం అభేకం అజోని స్వరూపే నమో ఏక రూపే నమో ఏక రూపే పరయం పరాపరం ప్రజ్ఞా ప్రకాశీయ షేదం అక్షయాత్ అద్వై వినాశీ నజాతం నపాతం నరూపం నరంగే నమో ఆదభంగే నమో ఆదభంగే హితే కృష్ణ సే కీట కూట ఉతార ఉపాయే ఉసారే గడే ఫేర మేటే బనాయే అగాధే అవయాద్ అద్వై వినాశీ పరయం పరాపరం పూరణ ప్రకాశీ न आदंग न वैदंग अगादंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अक्षय विभूते न जन्मंग न मरणंग न वरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेयंग स्वनेहंग सनाते उनंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग न रंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न शोभंग अभूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेयंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र स्वनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनि अशय आद अद्वायोहंग न जन्मंग न मरणंग न वरणंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अशेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पाहयंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पेदंग न परमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे अनुक्तं प्रभात अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं अशयाद अविक्ते अथापे विभुक्तं अशयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न सुखं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहु कांज के मंज के परम भूले कहू रंग के राज के धर्म अलूले कहू देश के भेष के धर्म धामे कहू राज के साज के बाज तामे कहू अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहू सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहू अंग के रंग के संग देखे कहू जंग के रंग पेखे कहु धर्म के कर्म के हरम जाने कहु धर्म के कर्म के भ्रम माने कहु चार चेष्टा कहु चित्र रूपं कहु परम प्रज्ञा कहु सर्वभूपं कहु नेह के रंग कहु देह दोखं कहु अखदि रोग के शोक सुखं कहु देव विद्या कहु दैत बाने कहु जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहु राज तीसाद गीता मसी हो कहु योग विद्या दरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु योग जुगतं कहु भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जश विद्याधरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पुण्या कहु वेद विद्या कहु व्योमानी कहु कोकी काव कथा कहानी कहु वज्र सारंग कहु वज्र रूपं कहु मद्र वाणी कहु शूद्र स्वरूपं कहु वेद विद्या कहु काव रूपं कहु चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहु परम पुराण कहु पार पावा कहु वेद कुरान के गीत गावा कहु शुद्ध से कहु ब्रह्म धर्मं कहु वृद्ध अवस्था कहु बाल कर्मं कहु ज्वाल स्वरूपं यरा रहत देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु जोग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हर्ता कहु भोग त्यागं कहु राज साजं कहु राज रितं कहु पूरण प्रज्ञा कहु

धारण कहू जंत्र रेतन कहू शस्त्र धारण कहू होम पूजा कहू देव अर्जा कहू पिंगला चारणी गीत चर्चा कहू बिन विद्या कहू गान गीतन कहू मरेज भाग्या कहू वेद रीतन कहू नृत विद्या कहू नागबानी कहू कारडू गूढ़ कथा कहानी कहू अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहू वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहू शैल शाला धरी क्षेत्रधारी कहू

अंतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरं सर्वं प्रकार अनभूत तेज अनछेज काद करता सजीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र ने जन्म जा जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम ने धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत पान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म

जेत्रा सवास नि देह नाज्या दांतनी रूपरास जय रोग सुग्नि जोग जुग जेत्रास आसनी पूम पुघत जय काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अख अभंग जय नीत नि तुचरंत बेद जय अलख रूप कथत कतीब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलव जोग साधत दुरंत तनसीत घर खा सहंत कई करप एक आसन बितांत कई जतन जोग विद्या विचार साधांत तद पावत ना पार कई उर्दादेशन ब्रह्मांत कई उर्द माध पावक झुलांत कई से मृत शास्त्र उचरांत वेद कई को काप कथत कतेब कई आगन होत कई पौन आहार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भाच नहीं जदव देव होत प्रताक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहू वेद रीत जग्याद करम कहू अगन होत्र कहू तीरथ धर्म कई देश देश भाकार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैकता स्पायत ना पार कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता स्पायत ना पार कहु राज रीत कहु जो धर्म कहु सिमृत शास्त्र उचर सुकरम निवली आद करम कहु हस्त दान कहु अश्वमेध मक्को बखान कहु करत ब्रह्म विद्या विचार कहु जोग रीत कहु व्यर्थ चार कहु करत जक्ष गंधर्व गान कहु धूप दीप कहु अर्घ दान को पित्र गरम कहु वेद रीत कहु नृत नाच कहु गान गीत कहु करत शास्त्र से मृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास के

कई करत गुड़ विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखी मुरार बिन भगत सगत ने परत पान भव करत हो मार जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीना फोकटो सर्व धर्मा बिहीना तो प्रसाद तोटक छंद जय जम्पो जुगण जूह जुअंग भय कंपो मेर पयाल भुअंग तपताप सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभूत अशेद अशियंग अनकाल अपाल दयाल असुअंग जय ठट्टियंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव अदेव बरंग सबकी दीन जिमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न सुख न भोग भुअंग जय खेद न भेद न शेद शयंग जय जातना पातना मात पितंग जय रचियंग क्षत्रि क्षत्र छितंग जय रागना रेगना रोग भणंग जय द्वैघना दागना दुख गणंग जय अंधते ब्रह्मण रचियो दस्चार करी नव खंड सचियो राज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आ प्रचंड लियो श्री सिंधर बिंद नगिन नगंग श्री जाक्षी गंध्र फणिंद भुजंग रज देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज से तज उत्त भुजंग किय देव अदेव सराज पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जय दातात न मात न प्रहत सुतंग जय रोग न सोग न भोग पुवंग जय जम्प है किन्नर जाछ उजुअंग नर नारद पुसंग जाय किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रतादिक पांद गणंग पहु पुहूत अवेख भवान तुवंग जे अंडज से तज देर रजंग अच भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बंजास कियो फल फूल कली पुअ मेर आकाश निवास हितंग रज रोच एकादश चंद्र वृतंग दूत चांद दिनीस दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अंधूत अभूत अछूत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सूग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जय पंडित देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पारना पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत

सुत सेंध अधोमुख ताप तप कई काल पल्लो तप ताप कर नीने कृपा निध पान पर जय फूगण धर्म सब एक चित कृपा निध को जप है तेउया भव सागर को उतर है भव भूल ना देह पुनर्धर है एक ना बिना ने कोड वृत्ति एक

अधिक अभिक है सदैव विश्व भरण है, विश्व अंबर विश्वनाथ है, विशेष विश्व भरण है, जिमी जमान की बिख है सदैव करम परम है, अद्वैक है अभिक है अलेख नाथ जानिया, सदैव सर्व ठौर में विशेष आन मानिया, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण अकुरान नीत नीत क्या बतावई, न कर्म में न धर्म में न परम में।

ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है, ना हान है ना बान है, समान रूप जानिया मकीन अमकान अप्रमाण तेज मानिया, ना देह है ना गेह है, ना जात है ना पात है, ना मंत्र है ना मित्र है, ना तात है ना मात है, ना अंग है ना रंग है, ना संग है ना साथ है, ना दुख है ना दाग है, ना द्वैग है ना देह है, ना सिंह है ना स्यार है, ना राव है ना रंग है, ना मान है ना मौत है, ना साख है ना संग है, ना जच है ना गंधर्व है, ना नर है ना नार है, ना चोर है ना शाहू है, ना साहू कुमार है, ना नेह है ना गेह है, ना देह को बनाओ है, ना शल है ना छिद्र है, ना शल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है, न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न शल है न छिद्र है।

है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपार है, ख्याल है, खंड है, न रोग है, न सूग है, न भेद है, न पंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाथ है, न शीत है, न सूच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न शल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेक है, न द्वी है, न द्रुह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, भंज है, भरम है, भूत है, अशेद शेद है, सदा

Najatah napatah nacitrecah nabaranah Beyantah anantah anant tej janiya Abhum abhijah sada achij tej maniya Na adah na biadah agad rup lekhiya Adukha adagah ashay pratap pekhiya Na karamah na paramah na dharam ko prabhavah Na jantrah na tantrah na mantra ko ralavah Na shalah na shidra ko sarupah Abhangah anangah aganjah सी विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ मोहकार है ना आध है ना गाध है ना ब्याद को विचार है ना रंग राग रूप है ना रूप रेखरार है ना आहाव है ना पाव है ना दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करांत सेव है सदा सिसत्पति तपस्पति वनस्पति

ताव प्रसाद रुआ मल शांद रूप राग नारेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाथ अगाध पुरख सुधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाकु आदि पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात न ताज जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र चिह ना चित्र आद देव उदार मूरत अगा

हार हो विराज धीराज राज प्रवीण जाच गंधर्व देव दानुन अब्रहम क्षत्रियन माहे बैस नंगे बिख्या विराज शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौर न पील पी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध्य वरध न भूम

अगन बाए जले थले महे सर्व ठौर निवास देह गेना नेह स्नेह अबेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अद्वेख चक्र चिन्ह वरन जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आदेव अपाल दीन बंध प्रवीण त्रिपा।

कूट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अन्ना मद जागो भूत भगवान सत द्वापर तृतीया कल युग चात्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महा मुन गाय गंधर्व अपार हार हार तखे सब नहीं पाइया तह पार नारद आदि वेद व्यासक मुन महान अनंत त्याय त्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच अपच्छ्र अपार सोद सोद थके

दामनी दमंकण तुझा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरदार विबरखण दुष्ट प्रगलखण पुष्ट प्रहारखण दुष्ट मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूम आकाश तल उर्ध अधे दामनी प्रहासन सो छब निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गति रक्तासुर आचन जोध प्रमाचन निर्दय नराचन धर्म वृते श्रोणांत अचिंती अनंत विवंती योग जयंती खड़ग तहरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओग निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उबारण शुद्ध मते फणि अर्फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति स्नान अष्ट प्रभान भूल निवान तेज अतुलंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन ओम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारं चिच्छुर हारं धूम दुखारं द्रप मथे दाड़ी प्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतिजंत अष्ट पुजे जय जय हो सी मह खासुर मर्दन परम विनाशन धरम धुजे कंगुरु कमंकण शस्त्र चमंकण फणि अर्फुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रहासन सृष्टि निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह शुद्ध सना

से उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रगर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रधर खण बितल तले अष्टायद बाहन भूल निबाण संत पणाहन गूढ़ गते जय जय उसी में खासुर मर्दन आद अनाद अगाध भृते दुख दुख प्रबच्छण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण सूर सरे सारंग सनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय उसी।

अष्टायद चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद भृति डुगडुगी दमंग बाग बबंग भुजा फरंग शोध गति जय जय हो सी मखासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मति चछरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक पटी पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटी चंद्रानन चार नरक निवार पतित उधारे मुंड मथे जय जय हो सी मखासुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आदि कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान अर्दन बिड़ाल बधे सरदार विवखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम दुजे धूमराज विध्वंसन सुरन सुनतन सोम्भ नपात सोम्भ मथे जय जय हो सी मह

ने सब वेद कहत कहू नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाय मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पद्र पूजा करंत कई सिद्ध सास सूर सेवंत कई पलट सूर सिद्धा कराए प्रभु एक रूप द्वा कह रखाए अंश तेज अन्वय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अन्वय अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हर दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल जल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पाप नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दू एक बार अच्छा।

कवंजा जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चह नहीं रंग रूप जय खेद मेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धं बृहत सिद्धं स्वरूप बुद्धं अपाल युद्धं अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशे जितेज अनभिज अदा।

पानहार के रुकोट रुद्र जुगिया द्वार के वेद व्यास ब्रह्मा आनंद जय नेत नेत निज दिन उचरांत तो प्रसाद सवये दीनन की प्रतिपाल करा निशांत उबार कनी मन गारा पाछ पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतिपार पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दया निध दुखत देखत है पर देत नहारा दात है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल धारा खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रिय संभार पार न पा सका पद्मा बल भेद गति अभेद उचार रोजी राज लोकत राजिक रोग रोहान की रोजी ना टारा कीट पतंग कुरंग पुजंगम भूत भविख भगवान बनाई देव अदेव खपे अहंग में न भेव लखे।

काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना भय देह विहीन स्नेह सबूत नेह विरक्त अगेह अशह जान को देत अजान को देत जमीन को देत जवान को दह काहे को डोलत है।

अपनो कर दया कर पाव शंभू न पेटन पाव और की बात कहा कह तू सौ सुपेट ही के पट बीज बचाव जाछ भुजंग सुदानव देव अभेव तुम सभी करते आव भूम आकाश पताल रसातल जाछ भुजंग सब सिर ने आव पाय सक नहीं पार प्रभाव हु को नेत ही नेत वेद बताव खोज ठगे सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आव नारद से चतुरानंद से रूम नारिक से सब मृगायु वेद गते अपना भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयु पाय सक नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनातन त्यायु त्यांत रो त्य को मन में यह को अमितोज सब जगशायु वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब पचहार वेद न पाय सके अनभेद को खेदत है अनशेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारी आद अनाद अगाद अभेख अदवैग जपियो ते नहीं गुलतारी तीरथ कोट किए स्नान दिए वह दान महावृद्धारी देश कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्रधारी योगे छलैया मा सत्रन के सालु है। दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। जोध के जितैया।

पूर्वी न पार पव हिंगुला हिमालत आव गोर कर तेज गुण गाव तेरे नाम है। जुग जोग साधा पौन साधना की तेक बाधा आरब के आरबी आराधा तेरे नाम है। फरा के फिरंगे मान कंधारी कुरेसी जाना पच्छम के पच्छमी।

बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है। रूह के रोहले मांग देश के मघले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश न आवे तिब्बत देहाय दुख देह के दलत है। जिना तो हित आयो तिना पूरन प्रताप पायो सर्व धाम फल।

कृष्णावतार किते राम कहियत है, किते ससरासी किते सूरज प्रकाश, किते मुंडिया उदासी योग द्वार रहियत है, किते महादीन किते व्यास प्रवीण, किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है, करते है विचार पैरा पूरा न को पावे पार, ताही ते अपार निराधार लहियत है, पूरन अवतार निराधार है न पारावार, पाइये न पार पे अपार कै बखानिया, अद्वै विनाशी परम पूरन प्रकाशी मारूपु के राशि है अनासी कै गमानिया, जंत्र हु न जात जाकि बाप हु न मायता की पूरन प्रभा की सो छटा कै अन मानिया, तेज हु को तंत्र है के राजसी को यंत्र है, के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कै कै जानिया, तेज हु को तर है के राजसी को सर है, के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है, कामना की खान है के साधना की सार है, विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है, सुंदर स्वरूप है के पूपन को पूप है, के रूपों को रूप है को मत को प्रहार है, दीनन को दाता है गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है, सिद्ध को स्वरूप है के बोध को विभूत है, के क्रोध को अभूत है, के अशय विनाशी है, काम को गुणिंद है के खूबी को देहंदा है, गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है, कालों के काल है के सत्रण के साल है, के मित्रण को पोकत है के वृद्धता की बासी है, जोग को यंत्र है के तेज को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है के पूरण प्रकाशी है, रूप को निवास है के बोध को प्रकाश है, के सिद्धता को बास है के बुद्ध को घर है, देवन को देव है निरंजन अपेव है, अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है मान को दिवैया है, यम जाल को कटैया है के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है।

हिंग लाहे मन लगावे हब हब सी हल बीत हवे पूर बिन पार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव हूँ को देव है निरंजन अभेवनाथ।

राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरै अधर्म शाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के शीर कदि शिरावद छात कदि छतरा नीर छपा कर कदि शब काल इंद्री के कूल के हंस नीति सियारो मीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलव गढ़ रूप कैसी रामपुर सोराती सुरंगाबादनी के रही चूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरति हरी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबादनी कैसो ही अत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नीर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रा घेर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है बखरी कंधारी और गखरी गर्द दशारी पौन के आहारी तेरो नाम त्या

शोभा बसंत जहतः प्रडुल्ल बन तन दुरंत खग मृग महान जहतः प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुलतंग प्रफुल्ल लह लहत मोर फिर ढुरहे जान मन मथ चौर गुजरत कमाल राजक रहीम करुणा निधान

जहतह प्रफुल्ल सुंदर सुजान बन तन महीप जल थल महान जहतह प्रसोह करुणा निधान जगमगद तेज पूरण प्रताप अंबर जमीन

कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रणघाता। जे अस दुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे।

मत ऊची मत पत का राखा आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे धर्म का जयकार खालसा जी साहेब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन ददार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी बबेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारण जी तपियाने जी खडूर जी गुरु की बावली श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन ददार मेले बोलो जी। थम जी ननकाने जी करतारपुर जी बाबे नानक डेहरे जी तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहिब जी दमदमा साहिब जी धमतान जी मुक्तसर जी पौंटे जी तख्त पटना साहिब हरमंदर दिल्ली मै शीशगंज रकाबगंज बाला साहिब बंगला साहिब सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मेले बोलो जी। भगौण साहिब जी पंजे साहिब जी कपाल मोचन जी रणमोचन जी नानक मत्ते जी तिलगंजी जी नानक जीरा जी शिकारघाट जी हीरा घाट जी माता साहिब देवा जी संगत साहिब जी मालटेकड़ी साहिब जी बसमत नगर दमदमा साहिब जी बंदा घाट जी नगीना घाट जी श्री गंगा जी गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मेले वालो जी। सर्व समुखालसे जी को नगारिया निशान साहिबा सं जगत तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अपचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मेले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी बोलो जी बोलो जी बोलो जी श्री वाहेगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतर जामी सचे पातशाह जी महाराज आप जी के हजूर अमृतमयी शब्द बाणी कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहेब जी की अरदास अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना बाणी सच खंड विच प्रवान करना आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना सिख पढ़ दे सुन दे सर्व

पूरन करो ग्रंथ तो मैं करो सहाय पंकी छंद श्री अकाल की उस्तत खंड बेहन

0: कृपान कलगीधर स्वामी दान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
1: बोले।

लाडली फौज अति सत्कारयोग गुरु की लाडली फौज गुरु के निहंग सिंह उन्हां वल्लों इतिहास दा माण बेअंत माया आई है। गुरु साहब चढ़दियां कला गुरु की फौज करेगी मौज। गुरु साहब जी अपनी फौज दे सिर ते आप मेरा भरिया हथ रख के खुशियां दे खेड़े बख्शिश करन। असल विच जिहड़ा मनुख श्रद्धा ते भावना दे नाल निम्रता दे विच आ के ते गुरु की सेवा करदा जां गुरु दे सिखां दी सेवा करदा है ना उहदी भावना जिहड़ी है उह संपूर्ण हो जांदी है। हुण इसे तरह भाई लाल सिंह ने श्रद्धा दे नाल भावना दे नाल जिहड़े गुरु के प्यारे सिखां दा प्रशादा वरतिया सी ना उह जदों आए उहने बड़े प्रेम दे नाल भावना करके श्रद्धा करके गुरु का रूप जान के उन्हां नूं प्रशादा छकाया। गुरु की देख बनी उन्होंने अरदास की प्रशाद वरताया। अरदास जदों की ना जां हर एक मनुख जदों प्रशादा छकदा है जिहड़ा गुरु का सेवक है ना वह गुरु का शुकराना जरूर करता है। जिथे गुरबाणी विच फरमान आउंदा है जिसका दिता खामना तिस कहिए सहवास नानक हुक्म ना चले ही नाल खसम चले। अरदास ये हर गुरु का सिख जिहड़ा है अरदास करता है। जदों गुरु के प्यारिया ने प्रशादा छकिया गुरु की देग वरताई अरदास की आखिर विच कहा कि जो भाई लाल सिंह की मानों की कामना है ना वह संपूर्ण करो गुरु जी। आप जी का प्यारा सिख है और निम्रता दे नाल प्रेम वस हो के इसने सेवा की है। छोटा बच्चा अपनी माता पिता की गोद का शिंगार इतिहास का मान 100 रुपया करके गया है। गुरु साहब उन्हें विद्या की दात बख्शिश कर तंदुरुस्ती की दात मापिया का आगा आग्ञाकार बख्शिश कर। गुरु साहब जी मैं गुरु के चरणों में बेनती करदा जे इस वक्त भाई लाल सिंह हाथ जोड़ के ते अरदास दे विच खड़ा सी और गुरु के सिखा ने आखिरी शब्दावली कही नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। और जिहड़ी ढाल सी ना उहनू ऐ जापिया भी मेरी ढाल वाकई गुरु दे सामने जाके ते मेरी वह गलती बख्शवा देगी। जो मैं सेवा कीती है ना वह मैं बख्शिया जावांगा। गुरु के सिखा दे विच आप वरतदा गुरु विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। कलगियां वाले पातशाह महाराज ने कहा सी मेरे दर्शन दार करने हो ते पांच सिंह सजे तजे होण ते उन्हां विचों मेरे दर्शन हो जाणगे। एक सिख ने कहा महाराज बई जे पांच ना होण ते कहण लगे कोई गल नहीं चार होण फिर भी दीदार होणगे। एक सिख फिर खेड़े पै गया कहिंदा महाराज जे चार ना होण तीन होण कहिंदे फिर भी दीदार होणगे कि दोही संगत है ना। और फिर सिख कहिंदा महाराज भी देख सवा लख फौज ही होए ते कहिंदे भी जिहड़ा सजिया तजिया होएगा ना गुरु का सिंह जे तुसी उहदे भी दीदार करोगे खालसा मेरो रूप है खास ये मेरा खास रूप खालसा है मैं उहदे विचों ही तुहानूं दीदार बख्शिश करांगा। मेरे कलगियां वाले पातशाह महाराज जी दे उहनां महान सिंघां दी सेवा प्रशादा छकाया भाई लाल सिंह अज ढाल लैके ते मेरे बाजां वाले माही दे सामने जदों जाके भेटा कीती ते अज कुछ जाण दा लहिज़ा होर सी। आप जी समझदे होगे एक मनुख जिहड़ा हंकार विच आया उह सेवा कर रहा उह किसे लेखे विच नहीं। ये मैं नहीं कह रहा गुरबाणी का फरमान है बद्धा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार वह किसे लेखे विच नहीं। पर जे निम्रता विच आ के मनुख तन मन नूं जोड़ के सेवा कर लै

0: सच ते आयन सच जो मर जम सो कच नि कच महला पहला
1: वडी वडियाई जा वड्डा नाओ वडी वडियाई जा सच ने आओ वडी वडियाई

अल मलखाई सिछाई पाई मोर गंदे पत गवाई विण ना वे किछ थाए न पाई रह पे बाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पुछताणी।

पहला कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसनहार कुड़ सोयना कुड़ रूपा कुड़ पहननहार कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़।